माधोरी सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो दरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होंदा, मेरा काम इन्ना है। ओ भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तैनूं गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण ता भी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगदी, जांदियां भी देर नहीं लगदी। जे तैनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बता दिता है, सगों होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार विच बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़दा है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़दा है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे है की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? इह ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल ए है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा वड्डा राजा सी, इंद्र जिसदा नाम सी। इहने सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां। ऐ भलिया, तेनू तन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है ओह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तैनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधीए जे रहना होवे, बहुता कुछ उत्थे बणाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार, रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, भई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इस तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ।

जी जो पूरन सिद्ध सन उन्हां ने सुनी आवाज ते एकदम सोचन लग पे ए आवाज ते मैं परमात्मा दे घरों सुनदा हां, अज बाहरों किथरों आ रही है, जां अख खुली थले आए दरवाजा खोलिया की देखदे हन, ए ते गुरु नानक दा स्वरूप गुरु अर्जन देव जी महाराज आप कीर्तन कर रहे हैं। बस गुरु अर्जन देव जी महाराज कीर्तन कर दे रहे, बाबा मोहन जी सुन दे रहे।

प्यारा लिखा है चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोरी है बाही जना दी पकड़ी है सिर दी जय बाही ना छोटी है असी जकारा बुलावांगे सारे ने उच्ची वांग करनी है सच्चे पातशाह साडी वांग।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उठापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतृण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहरा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहु महादान होय के मांगो धन देत हो। कहु महाराजन को दीजत अनंत दान।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण शाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी पई है।

मुस्कुरा के कहा अपने नौकर नू, हां जोगी राज जुड़िया होया पर परमेश्वर दे नाल नहीं, अपनी लोई दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा है,

योगी राज ने अखां खोलियां, बैठियां लोकां वाल देखिया ता ए गल कही, ऐ संत जनो, आज हम आप लोगों को तीनों लोकों की बातें सुनाएंगे। आज हम ब्रह्मपुरी में गए, वहां वेदों की कथा हो रही थी। फिर हम विष्णुपुरी में गए,

आप सब लोग सुखी बसो। इस जोगी राज ने ए गल कही ते तन गुरु नानक साहब कहन लगे, जोगी राज तुसी की किया सानू समझ नहीं आई, एक बारी फेर कहो। अज तक किसे ने ए सवाल नहीं सी कीता। गुरु साहबा नू घूर के देखे ते जोगी राज कहंदा है,

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखां बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनू ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की समझांदे।

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है कि मैं

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे, पाए तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी।

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ए बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बनियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भज्जिया। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई ओ संत नहीं, पता है ओ कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिटे चमकदे हुए लोटे फड़े हुए ने।

वसुधा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाए।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया।

इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया, गल्लां बातां करदा रहा। बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया वो सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली

भगत जी कह रहे ने कि जिहड़ा सप्प है ना अपनी कुंज ते छड्ड दिंदा है, बिख कहिंदे ने जहर नूं, पर अपना जहर नहीं छड्डदा।

कि जिस तरह पानी दे विच बगला जाके एक लत दे पार खड़ा हो जांदा है अखां बंद करके एदा रंग चिट्टा हुंदा है ते पानी दे विच रहण वालियां छोटियां छोटियां मच्छियां सलाह करदियां ने चलो पैणा बड़े वड्डे संत महापुरश आए ने जेड़े एक लत दे पार अखां बंद करके सिमरन करदे ने ओ सारियां मच्छियां ते आंदियां ने दर्शना वास्ते बगले नु संत समझ के पर बगला जिहड़ा है एक लत दे पार अखां ते बंद हुंदियां ने पर कैरी अख करके देखदा रहिंदा है कि केड़ी मच्छी मेरे ज्यादा कोल है ओ ते मत्था टेकदियां ने संत समझ के ते ओदों ही पता लगदा है जदू बगला मच्छी नू मुंह विच पा के ते उड्डण दी करदा है भगत जी कहंदे ने ए संत भी ओहो जे ने उस बगले दी तरह के जदू दा लगदा है इंसान नू लुट पुट के

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

के रंग बड़ा सोहना पर खांदा की ये कीड़े ते मकौड़े ऐसे ही ठग दियो बखाने इसी तरह इना संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे असीं त्यागी पर इना संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मेरे गलों झगड़ा ला ले है भाई मैं पखंड नहीं करदा उस परमेश्वर दा नाम जपे है उदे नाल मिल गया है भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो तुसी भी इना पखंडा तू

0: जिदे बोला चो दीना ले आ निकले तनो मनो गरीबा दा
1: तनी होवे
0: जिनू वेख के मौत नू शिड़े कंबा अणखी सूरमा तेग दा तनी होवे करे सिर सरवार ने वतन तो जिदे विच कोई कुदरती
1: कणी होवे
0: साडे अथरू वेख के तड़ उठे होवे जिसनों दिलों प्यार साडा जेड़ा कौम दी शमा तो जानवारे होवे एहो जिहा
1: जथेदार साडा
0: जथेदार बाबा बुड्ढा सिंह जी दी ललकार सुन के सैकड़े सिंघां दे डोले फर्क उठे अखा विच खून उतर आया अते मसे रंगड़ तो गुरु घर दी निरादरी दा बदला लैण वास्ते सिंघां दे सीने विच अग मच उठी। उसे वक्त भाई सुखा सिंह माड़ी कंबोकी वाला अते भाई महताब सिंह पंगू मीरकोटिया उठ खड़े हुए। सिंघां शेरां दे हत्थ तलवारां दीआं मुठ्ठां ते चले गए। जथेदार तों गुरु घर दी राखी करन वास्ते आग्या मंगी तां पंथ ने खुशी दे जयकारे छड्डी। गुरु महाराज अगे अरदास कीती तां भाई सुखा सिंह अते भाई महताब सिंह घोड़ियां ते सवार होके जिस तरह अमृतसर साहिब वल नूं जा रहे हन उस समय दे दृश्य नूं आप जी दी सेवा विच हे

मन क्यों डोलदा? मन दे डोलन दा कारण की है? क्योंकि मन दा कोई आसरा नहीं, मन दा कोई सहारा नहीं। शायद उपदेश देंदे ए गल समझ आ रहे ने, सतगुर संग ना ही मन डोल। जे मन नूं ए यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन नहीं डोल, फिर मन नूं इक दलासा है, मन नूं इक भरोसा है कि गुरु मेरे नाल है। पढ़ते ते आपां जरूर हां, गुरु मेरे संग सदा है नाले, पर यकीन नहीं करदे, विश्वास नहीं करदे, भरोसा नहीं करदे। जे भरोसा हो जाए तो वाकई मन डोलदा नहीं। पर सतगुरु ने ख्याल दिता है कि मन दे डोलन दे कुछ कारण हैं, कि मन क्यों डोल जाता है। चार कारण कुछ सियाणियां ने गिण के दसी। इस मन नूं डर है चार प्रकार का, जिस कारण यह मन डोल जाता है। वो केड़ा है? पहला सरकार दा, ते दूसरा है समाज दा, तीसरा है रोजी दा, चौथा है मौत दा। ये चार प्रकार दा डर मन्निया गया। हुण जे इना तो बढ़ जाए मन नूं ए निश्चय यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन डोलदा नहीं। इना चारियां दी गल सतगुरु ने बाणी विच कही है कि सरकार का डर कैसे